नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा ही एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव

0: सुप्रभात। एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। महानगरों की खबरें होंगी, आज मौसम का हाल जानेंगे, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि आज विश्व हास्य दिवस है और प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है और सूर्य दिवस भी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। और आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार फरहत, एंड ऑल्सो टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड morning, good day everybody, we welcome you along. This is Aaj Savere, and yes, we have a lot of interesting stuff which we have lined up for you. Farah told you about that, international, national news, metro city updates, and we'll also explore today's history. Today it's 3rd of May 2026. So without any further delay, let's get started with the headlines.
0: जी बिल्कुल शगुन, सबसे पहले हम मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल

0: during which emergency alert messages, they were broadcast to mobile phones across the country. As part of this, a notification with a siren alert was sent to the mobile devices of citizens to test the system. This happened yesterday.
1: बिल्कुल. और अब आगे पढ़ते हैं. नीट परीक्षा का आयोजन आज किया जाएगा. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी. नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है. एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसे एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, who is on an official visit to Jamaica, Suriname and Trinidad and Tobago, has reached Kingston to Jamaica this morning. In a social media post, Dr. Jaishankar shared that he was welcomed by his Jamaican counterpart, Kamina J. Smith. The minister added that he looks forward to engaging with the Jamaican leadership, business community and members of the Indian diaspora over the next 2 days. The External Affairs Ministry said in a statement that during the visit till 10th of this month, Dr. Jaishankar will meet the leadership of the three countries. The discussions with his counterparts will cover the entire gamut of bilateral relations, regional and global issues of mutual interest. This visit is envisaged to continue the momentum of India's political engagements with Jamaica, Suriname and Trinidad and Tobago and boost the long-standing and friendly relations with these countries, reflecting mutual commitment to South-South cooperation. Dr. Jaishankar is also expected to have bilateral engagements and interactions with prominent leaders of businesses and members of the Indian community in these countries.
1: और शगुन अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है. ये एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है. इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है. एयरलाइन ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्पिरिट एयरलाइंस इससे पहले भी 2 बार दिवालिया हो चुकी थी. कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था. एयरलाइन ने कहा है कि कंपनी की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और अब ग्राहक सेवा उपलब्ध नहीं है.
0: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट द यूएस इंडियन कम्युनिटी इन दीज कंट्रीज.
1: और शगुन अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है. ये एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है. इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है. एयरलाइन ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्पिरिट एयरलाइंस इससे पहले भी 2 बार दिवालिया हो चुकी थी. कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था. एयरलाइन ने कहा है कि कंपनी की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई और अब ग्राहक सेवा उपलब्ध नहीं है.
0: President Donald Trump has said that the US will significantly reduce its troop presence in Germany, escalating a dispute with German Chancellor Friedrich Merz as he seeks to scale back America's commitment to European security. The Pentagon on Friday had initially announced it would pull some 5,000 troops out of Germany, but when asked Saturday about the reason for the move, Mr. Trump didn't offer an explanation and said an even bigger reduction was coming. He told reporters in Florida that US is going to cut way down and they are cutting a lot further than 5,000. Earlier, German Defense Minister Boris Pistorius today said that a planned US troop reduction in Germany should push Europe to strengthen its own defenses. He urged Europe to take greater responsibility for their security, noting Germany is expanding its military and infrastructure. The US military presence in Germany began after World War II and peaked during the Cold War in the 1960s. So the US military deployment in Germany, currently at more than 36,000 active duty troops, is by far its biggest in Europe, compared with about 12,000 in Italy and 10,000 in the United Kingdom.
1: और अब खेलों की बात कर लेते हैं. आईपीएल क्रिकेट की. आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया. प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से और ये मैच खेला जाएगा दोपहर बाद 3:30 बजे से.
0: नाउ टेलिंग आवर लिसनर्स अबाउट पोल वॉल्ट. सो कुलदीप कुमार रिप्रेजेंटिंग मध्य प्रदेश सेट अ नेशनल मेंस पोल वॉल्ट रिकॉर्ड ऑफ 5.41 मीटर to win gold on the opening day of the inaugural Indian Indoor Open Combined Events and Pole Vault competition in Bhubaneswar. The 21-year-old cleared the height of 5.41 metre in his first attempt, surpassing the previous national record of 5.4 metre set by Dev Kumar Meena and also improving the indoor record of 5.3 metre, which was

0: set earlier in March by Regan G of Tamil Nadu. Regan G took silver with 5.25 meter, while pre-event favorite Meena finished bronze with 5.2 meter. The upcoming outdoor season will be more exciting. The top three pole vaulters here in Bhubaneswar, they will be aiming to earn a place in the national team for the Commonwealth Games in Glasgow and the Asian Games in Japan.
1: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें। तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
0: यस, लेट्स वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद चेन्नई। फर्स्ट अपडेट, चेन्नई कॉर्पोरेशन हैज इनेबल्ड क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट फॉर पीपल टू स्कैन एंड पे प्रॉपर्टी टैक्स। So City Revenue Officer K. Magesh said they have an annual revenue target of 900 crore and 511 crore. It has been collected through online payments. Physical collections can be resumed only after the election results. So the civic body has more than 14 lakh assessees. Another update from Chennai, Farhat. Radiologists at a city hospital will be using artificial intelligence to slash radiation exposure in lung cancer screening by up to 80% while preserving diagnostic accuracy, which is needed to find tumours early. The study of 129 patients at a hospital in Chennai presented at the European Congress of Radiology in Vienna found that scans enhanced with deep learning algorithms achieved 83.8% accuracy in detecting the inconsistencies compared with 88.8% for human radiologists and 87.2% for traditional machine learning classifiers.
1: बिल्कुल शगुन, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी AI का उपयोग जिस तरीके से हो रहा है वो काफी सराहनीय है।
0: And it will save so many lives, right?
1: जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को संगीत में राम कथा का विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी प्रस्तुति अपने अपने राम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और मानवीय मूल्यों को संगीत में शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को मर्यादा, सत्य और कर्तव्य निष्ठा के मूल्यों से जोड़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि संगीत और काव्य के माध्यम से प्रस्तुत ये कथा लोगों को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का माध्यम बनेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ उसे समाज तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके लागू होने पर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और चिकित्सकों के लिए हर नए मामले की जानकारी जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को देना जरूरी होगा, जिससे प्रभावी निगरानी, शीघ्र पहचान और मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से समय समय पर उनको उपचार सुनिश्चित हो सकेगा।
0: We'll head to Bengaluru now. The first update, and it is about avian influenza H5N1, which is confirmed in dead peacocks and found in Kolihali, Tumkuru district of Karnataka. So a lab in Bhopal has confirmed it in the samples collected on April 29th. The influenza, also known as bird flu, is a zoonotic viral disease that affects poultry and may occasionally spill over to mammals, including humans. And swine as well. The state and district rapid response team led by Tumkuru Deputy Commissioner, it has started the containment measures and surveillance activities in the district. So an infected zone of 0 to 3 kilometers and a surveillance zone of 3 to 10 kilometers radius is established, where systems of fever and severe acute respiratory illness and influenza-like illness are being observed, covering a population of 20,432 across 38 villages. So the containment measures will continue for 10 days. And people, they asked to alert the health department about anyone facing respiratory illness.
1: और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, और इसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 89.79 रहा, और अगर बात की जाए लड़कियों की तो 93.15% उनका रहा, और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा 86.80। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा के लिए 14 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 12 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। और अब महाराष्ट्र का एक और खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित MMRDA ग्राउंड में महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कहा कि विकसित भारत के सपने को

0: professionals must combine knowledge and technical skills with compassion and empathy. He urged doctors to serve the nation's people with the spirit of Seva Param Dharmam, which means service is the highest duty. Governor Shukla praised Osmania Medical College as a prestigious institution that has produced dedicated and skilled doctors for many years. He appreciated the hard work and commitment shown by the graduates. The governor also recognized the role of families and teachers in shaping these young doctors, and he encouraged graduates to serve in all areas from rural healthcare to modern research while maintaining ethical values. The governor distributed graduation certificates to all successful medical students and wished them a bright future ahead. Farad.
1: और अब हम कोलकाता का रुख कर लेते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए थे और कल होगी मतों की गिनती. तो देखते हैं कि किसकी सरकार बनेगी. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है और इससे विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे. मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी और आयोग ने बताया है कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराध हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ की गई है. मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख इसमें किया गया है. कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था जिससे मतदान में बाधा आई. अनधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया. और श्रोताओं अब मौसम का रुख कर लेते हैं. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. दिल्ली में आज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. उधर मुंबई की अगर बात की जाए तो दोपहर और शाम के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके अलावा कोलकाता में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया. और श्रोताओं अब मौसम का रुख कर लेते हैं. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. दिल्ली में आज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. उधर मुंबई की अगर बात की जाए तो दोपहर और शाम के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके अलावा कोलकाता में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
0: वेल, इन चेन्नई इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज. बेंगलुरु अगेन इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई. देयर विल बी थंडरस्टॉर्म विद रेन. द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस इन बेंगलुरु. हैदराबाद partly cloudy sky with haze. It is expected over there. The minimum temperature will be around 26 degrees Celsius and maximum temperature will be around 40 degrees Celsius in Hyderabad. Farhat.
1: और श्रोताओं जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि आज है 3 मई, तो क्यों ना कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हंसी खुशी कुछ करने की. जब भी बात आती है कुछ भी काम करने की, तो अगर उसे उस काम को अगर हंसी के साथ खुशी के साथ किया जाए तो दिन ऑन बन जाता है. तो क्यों ना इससे पहले कि हम विश्व हास्य दिवस की बात करें, ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.

0: बहुत ही बूढ़े लोगों को भी और नॉर्मल लोगों को भी योगा करवाया जाता है। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हंसने की, जोर जोर से आप हंसिए तो ताकि अंदर की जितनी भी चीजें आपकी हैं, जो गमगीन चीजें हैं, वो बाहर निकल सके और आप अपने दुख को हंसी में बदल सके।
1: एंड लाफिंग इज एक्चुअली, लाफ्टर एक्चुअली इज कंटेजियस, एंड व्हेन वी सी देम डू दैट वी आल्सो स्टार्ट लाफिंग ऑटोमेटिकली, राइट?
0: बिल्कुल। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हंसने से ऑक्सीजन का जो संचार है वो अधिक होता है और दूषित वायु बाहर निकलती है, इसीलिए शायद कह सकते हैं कि आपका जो जब आप हंसते हैं तो आपका जो दिन है पूरा वो बहुत अच्छा हो जाता है।
1: सो लिसनर्स कैन यू नो गेट टुगेदर विद देयर फैमिलीज एंड लाफ आउट लाउड, राइट? टुडे आल्सो लेट्स टेल आवर लिसनर्स दैट इट्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। So this is celebrated annually, May 3rd, and it highlights the fundamental principles of media freedom, assesses its state worldwide, and also defends media independence. And this was proclaimed by UN General Assembly in 1993. So this day honors journalists who risk or lose their lives in the line of duty. So let's tell our listeners about the theme. So for this year, 2026, it is Shaping a Future at Peace, Promoting Press Freedom for Human Rights, Development and Security. So Farhad, this day serves as a reminder to governments to respect their commitments to press freedom and promotes ethical journalism.
0: बिल्कुल। वैसे भी हम लोग जब पत्रकारिता करते हैं तो सबसे पहले अगर बात आती है तो वो आती है खुलकर बोलने की, यानी कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको होती है, आप खुलकर बात कर सकते हैं, आप अपनी जो सोच है वो लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस देश में चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको एक लेख के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम को बुलंद करके आप लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं।
1: इट प्रोवाइड्स यू नो अ वॉइस, अ स्टेज to present our ideas, and it is a time for reflection among media professionals regarding issues of freedom and professional ethics as well. As we told you, well, this day it reminds us that governments should respect the commitments to press freedom, and also this day tells us, World Press Freedom Day tells us that ethical journalism should be promoted.
0: बिल्कुल। और एक कलम का सिपाही, बहुत ही पत्रकारिता पे बहुत ही एक अच्छी कविता लिखी गई है। मैं हूँ कलम का एक सिपाही, ना तलवार ना बंदूक चलाता हूँ, सच की स्याही से हर पन्ने पर इतिहास नया बनाता हूँ, इतिहास नया बनाता हूँ।
1: How profound and deep that is.
0: और अब आइए महत्वपूर्ण घटनाओं का और जिक्र कर लेते हैं। बात करते हैं 1971 की। नेशनल पब्लिक रेडियो ने 3 मई 1971 को प्रोग्रामिंग शुरू की थी, आज ही के दिन।
1: वी आर गोइंग वे बैक इन 1374। वेल बीसी, अ सोलर एक्लिप्स वाज ऑब्जर्व बाय मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमर्स। दिस इवेंट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सोलर एक्लिप्स, एंड द एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ टाइम नॉट ओनली रिकॉर्डेड द एक्लिप्स बट दे आल्सो नोटेड इट्स अकॉम्पनीइंग सेलेस्टियल इवेंट्स सच एज द प्रेजेंस ऑफ मार्स। And in 1494, Christopher Columbus sighted Jamaica during his second voyage, marking a pivotal moment in European exploration and colonization as well.
0: और सन 2002 की बात कर लेते हैं तो भारतीय वायुसेना का MiG-21 जालंधर में एक बैंक से टकराया, और आज ही के दिन जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और 17 लोग घायल हुए थे।
1: In 1913, the first Indian feature film Raja Harishchandra was released, marking the beginning of the Indian film industry according to time and date.
0: सन 2012 में 3 मई को 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, गोल्डन लोटस जीता गया।
1: In 1937, American author Margaret Mitchell won a Pulitzer Prize for her enormously popular novel Gone with the Wind, which was made into an Academy Award-winning motion picture 2 years later. In 1939, Subhash Chandra Bose founded the All India Forward Bloc, marking an important moment in India's struggle for independence.
0: और अब आइए श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम जाने माने शख्सियतों को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा की, जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। उनका जन्म झेलम में हुआ था और वर्तमान में जो है, और इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के नाम भी कई सारी जो है वो लड़ाई जीती थी।
1: वेल टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग राम बालकृष्ण शेवलकर, the prominent Marathi orator, writer, literary critic, and well, he is renowned for his contributions to Marathi literature and literary institutions as well. So he earned postgraduate degrees in Marathi and Sanskrit literature as well, and this began his career as a school teacher, Sanskrit lecturer, before serving as principal of college in Vani, Yavatmal district, for over 25 years. Well, he authored more than 50 books on Marathi literature. This includes essays, literary criticism, and anthologies. And he was a key figure in promoting literary discourse through his eloquent speeches and organizations.

0: प्रत्येक वर्ष मई माह के प्रथम रविवार को मनाया जाता है ये दिन। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से ये स्पष्ट होता है कि अधिक हंसने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि हंसना सभी के शारीरिक और मानसिक विकास को अत्यंत सहायक बनाता है। और जापान के लोग अपने बच्चों को शुरुआत से ही हंसते रहने की शिक्षा देते हैं।
1: Well, the celebration of World Laughter Day, it is a positive manifestation for world peace as well, and it is actually intended to build a global consciousness of brotherhood and friendship through laughter. राइट right?
0: बिल्कुल शगुन, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे भी जब हम लोग योगा करते हैं तो और right. पार्क में जब

0: So Crosby and his musical acts, they influenced male singers of the era that followed him. The list includes Perry Como, Frank Sinatra and Dean Martin.
1: और शगुन अब हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त को. नरगिस मशहूर गायिका जद्दन बाई की पुत्री थी. कला नरगिस को विरासत में मिली थी और सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाशे हक से अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों

0: So Crosby and his musical acts, they influenced male singers of the era that followed him. This includes, the list includes Perry Como, Frank Sinatra and Dean Martin.
1: और शगुन अब हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त को. नरगिस मशहूर गायिका जद्दन बाई की पुत्री थी. कला नरगिस को विरासत में मिली थी और सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाशे हक से अभिनय की शुरुआत की थी. और फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक बन गई.
0: वेल राइट फरहत, द टाइमलेस आइकॉन हूज ब्रिलियंस इन फिल्म्स लाइक मदर इंडिया and commitment to social causes. It reflected grace, strength and unwavering compassion. Her powerful performance as Radha in the Oscar-nominated epic Mother India. This role earned her the Filmfare Award for Best Actress and immortalized her as a symbol of Indian womanhood.
1: और शगुन नरगिस ने मदर इंडिया के अलावा आवारा, श्री 420, बरसात, अंदाज, लाजवंती, जोगन परदेसी, रात और दिन सहित कई सारी कामयाब फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया.
0: So if we talk about her pair with Raj Kapoor, they starred in classics like Andaz, Barsaat, Awara, Shri 420 as well.
1: जी बिल्कुल, तो क्यों ना उनके कुछ फिल्मों की ये गानों की मेडली सुन लेते हैं.

0: और शगुन आपको पता है कि 1957 में जब मदर इंडिया की शूटिंग चल रही तो उस दौरान और आग लग गई थी सेट पर, तो सुनील दत्त ने ही उन्हें बचाया था। तो एक साक्षात्कार में सुनील दत्त ने ये कहा था कि उस दिन अगर मैं नरगिस को नहीं बचाता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता, वो आग मेरे लिए वरदान बन गई।
1: एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज वी नो।

0: So her final appearance in the film Raat Aur Din, she became the first recipient of the National Film Award for Best Actress, and she was also the first actress to be honored with the Padma Shri in 1958.
1: बिल्कुल. और नरगिस की याद में सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन भी बनाया था, क्योंकि वो कहा करते थे कि कैंसर ने मुझसे नरगिस छीन ली, मैं चाहता हूँ किसी और का सुनील उससे अपनी नरगिस ना छीन पाए.
0: सच अ ग्रेट थॉट.
1: जी बिल्कुल. और इसके साथ ही अब वक्त चला है आपसे अनुमति लेने का. हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का भी ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आप दोबारा अगर सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर. तो इसके साथ ही शगुन और फरहत को दीजिए इजाजत.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक. भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया. अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा. मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया. देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका. और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. अब समाचार विस्तार से. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है. इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा. मतगणना 24 मई को की जाएगी. एक रिपोर्ट.
3: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है. 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा. वोटों की गिनती 24 मई को होगी. चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है. पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है. कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था. अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया. कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र.
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए. मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए. कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं. तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे.
4: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो. मतगणना

0: वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहाँ राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहाँ हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर माँ भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस टेलीमेटिक्स C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े

समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

0: भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त तो प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்டு.
1: எஃப்எம் கோல்டில் திரைகானம் கேட்கும் முன்,
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं.
1: நீங்களே திரை காணுதல் அடுத்து நாம் கேட்டு ரசிக்கலாம் தீரா காதல் திரைப்படத்தில் சக்தி ஸ்ரீ கோபாலன் பாடிய பாடலை.

0: நேர்லே, இன்று பிற்பகல் 1:10 இசை மலர் நிகழ்ச்சியில் அர்ஜுன் சாம்பசிவன் அவர்களின் கீபோர்டு இசை இடம்பெறும். அனுத்தமா முரளி அவர்கள், வயலின் ஆம்பூர் பத்மநாபன் அவர்கள், மிருதங்கம். 1.1 FM கோல்டில் இன்று பிற்பகல் 1:10 இசை மலர் நிகழ்ச்சியில் கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फौलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया है कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारी पूरी हो गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारी पूरी हो गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज सड़के आग लगने की घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दमकल विभाग ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 14 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। इस बीच शाहदरा पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि घटनास्थल से अब तक 4 शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित

0: प्रतिनिधित्व करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी की स्थिति का आकलन करने का एक अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा नव मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की थी। ये अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देने और विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी का मूल्यांकन करने का है। ये दिन प्रेस की आजादी और स्वायत्तता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सरकारों को प्रेस की आजादी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को राहत मिली। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on 24th of May. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel will be deployed for counting duty, supported by 4,624 micro-observers. Our correspondent reports that 234 counting observers, one for each assembly constituency, will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the commission. In West Bengal, election officials said that all arrangements are in place at 77 counting centres across the state, with multi-layered security in place to ensure transparency. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a reflection of the government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action. He also said the unmatched valour of the armed forces during the operation has marked it as a golden chapter in India's military history. Mr. Singh made the remarks while addressing an event named Shaurya, organised in New Delhi yesterday in the run-up to the first anniversary of Operation Sindoor.
2: Valor is not merely physical strength or skill in warfare. It is a resolute state of mind where before love for the nation, all comforts, attachments and fears become insignificant. Valor is that divine spirit in which a soldier rises above the bonds of affection for parents, spouse and children and pledges to protect the motherland.
1: India launched Operation Sindoor on May 7 last year in response to the April 22 Pahalgam terror attack. A massive fire today has claimed several lives in Vivek Vihar area of the national capital. The Delhi Fire Services said they received information about the fire incident early this morning, following which 14 fire tenders were rushed to the spot to douse the flames. The department informed that the fire was brought under control by 6:25 a.m. According to the Delhi police, the fire broke out on some floors of a four-story building. It said that during the rescue and fire extinguishing operations, more than 10 persons were rescued from the building. The National Eligibility Cum Entrance Test, or NEET, UG for admission to undergraduate medical education will be held today. The examination will begin at 2 in the afternoon and will conclude by 5 p.m. According to the NEET's information bulletin, last entry to the examination centre will be allowed till

0: dance and pole vault competition in Bhubaneswar. The India Meteorological Department has forecast rainfall over northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, as well as southern states of Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार किया 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जर्मनी से 5,000 से अधिक सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा स्प्रेड एयरलाइंस ने तेल की बढ़ती कीमतों के कारण परिचालन बंद किया माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार किया। 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जर्मनी से 5,000 से अधिक सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। स्पिरिट एयरलाइंस ने तेल की बढ़ती कीमतों के कारण परिचालन बंद किया। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया। और आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीय सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख सारे मोह
0: से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख सारे मोह सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 10 मई की अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर तीनों देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जर्मनी में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई थी और 1960 के दशक में शीत युद्ध के दौरान चरम पर पहुंच गई थी। जर्मनी में अमेरिकी सेना की तैनाती यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इससे लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा है कि तत्काल प्रभाव

0: से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्प्रिट एयरलाइंस इससे पहले भी दो बार दिवालिया हो चुकी है। कंपनी ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था। एयरलाइंस ने कहा कि कंपनी की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और अब ग्राहक सेवा उपलब्ध नहीं है। दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है और कई अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इसराइल की सेना ने सीमावर्ती गांव यारोन में एक कैथोलिक कॉन्वेंट के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। हाल की लड़ाई के कारण ये खाली पड़ा था। इसराइली सेना ने दक्षिणी क्षेत्र के 9 गांवों के निवासियों के लिए एक नई चेतावनी जारी करते हुए उन्हें इलाका खाली करने को कहा। 17 अप्रैल से लागू संघर्ष विराम के बावजूद इसराइल हिजबुल्ला ने अपने हमले जारी रखे हैं। लेबनान स्थित कैथोलिक चर्च ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि इस परिसर का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए थे। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले 26 अप्रैल को माली की सेना ने पश्चिमी क्षेत्र कैलिकोरो में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में, यूनेस्को के 1991 में, 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। यह अवसर

0: विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। खेल समाचार के अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX-2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नोमथाम मारियस प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार किया। 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जर्मनी से 5,000 से अधिक सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। स्प्रिट एयरलाइंस ने तेल की बढ़ती कीमतों के कारण परिचालन बंद किया। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया। और आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आईं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि आग 4 मंजिला इमारत में लगी।
4: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें 4 बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। श्री संधू ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत तथा सहायता प्रदान की जाए। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा मंडल में मुलापालेम गांव के उदय एक्वा उद्योग का दौरा किया। यहां राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों के लिए मछली उत्पादन बढ़ाने, आय के स्रोत बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने पर विचार विमर्श किया गया। श्री नायडू ने कहा कि श्रीकाकुलम जिले को प्रमुख एक्वा केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन की सिफारिश के बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से पराजित किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. Counting of votes for assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel will be deployed for counting duty, supported by 4,624 micro observers. Our correspondent reports that 234 counting observers, one for each assembly constituency, will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the commission. In West Bengal, election officials said that all arrangements are in place at 77 counting centres across the state, with multi-layered security in place to ensure transparency. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a reflection of the government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action. He also said the unmatched valour of the armed forces during the operation has marked it as a golden chapter in India's military history. Mr. Singh made the remarks while addressing an event named Shaurya, organised in New Delhi yesterday in the run-up to the first anniversary of Operation Sindoor.
2: Valor is not merely physical strength or skill in warfare. It is a resolute state of mind where before love for the nation, all comforts, attachments and fears become insignificant. Valor is that divine spirit in which a soldier rises above the bonds of affection for parents, spouse and children and pledges to protect the motherland.
1: India launched Operation Sindoor on 7th of May last year in response to the 22nd April Pahalgam terror attack. The National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG for admission to undergraduate medical education will be held today. The examination will begin at 2 in the afternoon and will conclude by 5 p.m. According to NEET's information bulletin, last entry to the exam centre will be allowed till 1:30 p.m. The agency has issued specific guidelines for the candidates. Along with their admit cards, candidates are required to carry one original photo identity proof such as

சந்த ஜனோல கல்ல சந்த ஜனோல கல்ல சந்த ஜனோல கல்ல சந்த ஜனோல கல்ல.

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है.
1: திரைகாலத்தில் அடுத்து ஒழிக்கிறது டி எம் சௌந்தரராஜன் பி சுசிலா பாடிய பாடல். இந்த பாடல் இடம்பெற்ற படம் செல்வமகள்.

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். நூறு புள்ளி ஒன்று எஃப்எம் கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे

0: शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Moderate rainfall is being experienced in different parts of the state since this morning. Due to intermittent rain over the past 3 days, mercury in many areas has fallen below normal. According to the Met Department, Dehradun rainfall is likely to continue most parts of the state today and tomorrow. The department has also issued a warning of thunderstorms accompanied by strong winds during this period. An orange alert has been issued for hailstorm and heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Haridwar, Pauri, Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district, while a yellow alert has been issued for other areas. According to the Met Department, this spell of rain may continue in the coming days, which would lead to a further drop in temperature. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall today at isolated places over northeast India, Kerala, Mahe, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry. Places over Jammu and Kashmir, Ladakh, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh are expected to experience thunderstorms and lightning today. Similar weather conditions also likely to prevail today over parts of Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Odisha, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh. The weather agency further predicted heat wave conditions today in places over coastal Andhra Pradesh. According to IMD, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to witness hot and humid weather conditions till tomorrow. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 3:30 today. Sunrisers Hyderabad are currently in third place, while Kolkata Knight Riders are positioned in eighth place. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stage is set for counting of votes for four states' assemblies and one union territory tomorrow. All arrangement in place. Election Commission orders re-polling in all 285 polling stations of Falta Assembly constituency in West Bengal. Polling to take place on the 21st of this month. A massive fire claims 9 lives in Vivek Vihar area of Delhi. OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict. World Press Freedom Day been observed today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
3: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
2: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
4: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा

0: सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यानम और माहे में होगी।
0: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं।

0: उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता

0: प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नेरम 2:30।

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் சர்மா. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी.
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी. मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है. मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं. ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी. ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी. इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे. कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण.
1: केरलम विधानसभा के 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी. हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं.
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है. DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था. सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं. EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है. राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है. जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई.
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी. पश्चिम

0: बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार मुश्किल की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनैतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। उधर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से शाम 7:30 बजे से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. In Assam, 40 centres have been set up across all 35 districts for the counting process amid tight security. The fate of 722 candidates, including 59 women, will be decided. In West Bengal, all preparations have been made at 77 counting centres across the state with multi-layered security in place to ensure transparency. More from our correspondent.
2: Out of 294 seats, counting for 293 assembly constituencies in West Bengal will be held tomorrow. Three-layer security arrangements for each counting center have been made with the deployment of district police, state police and central forces. Total 200 companies of central forces have been deployed for the counting venues. The whole process will be under the control of returning officers and assistant returning officers. There will be observers and police observers also. This is the first time the police observers have been assigned for the counting process, who will be a senior IPS officer. The counting process will be managed by a team of supervisor, counting assistant and a micro observer. Kollan Laha, reporting from Kolkata.
1: Meanwhile, the Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Palta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel are being deployed for counting. In Puducherry, elaborate security and monitoring mechanisms are in place for counting. In Keralam, senior officials reviewed the final round of preparations at all 140 counting centres.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: experience in financial, legal domains and applications must be submitted by 4/5/2026. Complete details are available on the website, that is at https://financialservices.gov.in. Broadcast Engineering Consultants India Limited, BECIL, a Government of India enterprise Noida, has invited applications for the post of Principal Chief Projects on contract basis with a consolidated pay and an upper age limit of 60 years. Candidates must have a full-time BE, BTech, MTech, MCA in relevant discipline along with at least 20 years of experience in project or contract management. Full details available at www.becil.com. The last date for receipt of applications is 4th May 2026. I repeat the website, it is www.becil.com. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, राजपुर खुर्द, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में एक स्थान सीनियर रिसर्च फेलो तथा 7 यंग प्रोफेशनल्स के लिए उपलब्ध हैं। वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 11 मई 2026 को प्रातः 11 बजे लिया जाएगा। ये रिक्तियां विशुद्ध रूप से संविदा अर्थात प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट nriipm.res.in। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में तथा डीसीओज में प्रतिनियुक्ति अथवा अवशोषण के आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए विधिवत माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर अपने आवेदन विधिवत माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, पद का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतनमान, आवेदन और चयन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों आदि के लिए देखिए वेबसाइट census.gov.in. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य ग्रेड 1, सहायक आचार्य ग्रेड 2 और सहायक आचार्य ग्रेड 2। संबंधित विभाग हैं पेट्रोलियम अभियांत्रिकी और भू अभियांत्रिकी, रासायनिक एवं जैव रासायनिक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, गणितीय विज्ञान, ऊर्जा एवं मानव विज्ञान तथा प्रबंध अध्ययन। संबंधित शाखा में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ पीएचडी, जिसमें पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हो, ये इन पदों के लिए पात्रता की शर्त है। पद के अनुसार अतिरिक्त अनुभव की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। पात्रता मानदंड और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए वेबसाइट rgipt.ac.in/en/page/faculty-recruitment। किसी भी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार देख सकते हैं अथवा ईमेल कर सकते हैं इस पते पर dofa.office@rgipt.ac.in। अंतिम तिथि रहेगी 1 नवंबर 2026। वस्त्र मंत्रालय मुंबई स्थित वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में 18 यंग प्रोफेशनल्स तथा 2 लीगल प्रोफेशनल के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड आदि के विवरण के लिए इस कार्यालय की वेबसाइट www.txcindia.com

0: www.gov.in पर उपलब्ध रिक्ति परिपत्र देखें और साथ ही adest2@gmail.com पर अनुरोध भेजकर ईमेल के माध्यम से भी इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। HIL इंडिया लिमिटेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पूर्ण विवरण के लिए देखिए वेबसाइट hil.gov.in/current-openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, मारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार जया, एंड हेलो एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड एज जया जस्ट मेंशन्ड, वी हैव फॉर यू टुडे अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज और डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, एंड वी बिगिन With the news headlines first.
1: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे।
2: इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग इन ऑल 285 पोलिंग स्टेशंस ऑफ पोलता असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन वेस्ट बंगाल। पोलिंग टू टेक प्लेस ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ।
1: राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु।
2: OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict.
1: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about World Press Freedom Day. Every year, 3rd May is a date which celebrates the fundamental principles of press freedom to evaluate press freedom around the world, to defend the media from attacks on their independence, and to pay tribute to journalists who have lost their lives in the exercise of their profession. World Press Freedom Day was proclaimed by the UN General Assembly in 1993 following a recommendation adopted at the 26th session of UNESCO's General Conference in 1991. This in turn was a response to a call by African journalists who in 1991 produced the landmark Windhoek Declaration. The Windhoek Declaration is a benchmark for ensuring press freedom around the world. It began at a seminar in Windhoek in 1991, but the ideas exchanged by the African journalists and media professionals acted as a catalyst to encourage press freedom, independence and pluralism in Africa and other parts of the world.
1: बिल्कुल सही कहा रेशमा। और मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19 है, वो भी कहता है कि हर किसी

0: किसी को अपनी राय और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, किसी भी माध्यम से जानकारी मांगने, लेने और देने का अधिकार है। फिर भी आज हर महाद्वीप में इस अधिकार पर हमला हो रहा है। आजाद प्रेस का मतलब सिर्फ सुर्खियां नहीं है, इसका मतलब है आपका यह जानने का अधिकार कि ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, स्कूल क्यों बंद होते हैं और न्याय मिलने में देरी क्यों होती है। जब पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाते तो नागरिक जान नहीं पाते, और जब नागरिक जान नहीं पाते तो लोकतंत्र सो जाता है।
1: एग्जैक्टली, एंड The theme for this year's World Press Freedom Day is Shaping a Future of Peace. This year, the day offers a critical moment to reaffirm freedom of expression and to align journalism, technology, including AI, and human rights actors around practical ways to strengthen information ecosystems for the future.
0: और इस अवसर पर पूरी दुनिया प्रेस की स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों का जश्न मनाती है। यह दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने और मीडिया को उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले हमलों से बचाने का एक अवसर है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी स्वायत्तता के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। साथ ही यह मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और इस पेशेवर नैतिकता से जुड़े मुद्दों पर चिंतन करने का भी एक अवसर प्रदान करता है।
1: According to UNESCO's World Trends Report 2022-25, press freedom has experienced its steepest decline since 2012. This decline is comparable to that seen during the most unstable periods of the 20th century, the two world wars and the Cold War.
0: और आज ना पत्रकारों को कई नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि गलत जानकारी, ऑनलाइन उत्पीड़न, आर्थिक दबाव और सेंसरशिप। सोशल मीडिया के इस दौर में सच्चाई का मुकाबला वायरल होने की होड़ से है, लेकिन हर न्यूज रूम, हर फील्ड रिपोर्ट और हर फैक्ट चेक में साहस आज भी मौजूद है। जानकारी में हेर फेर किए जा रहे हैं, एआई की मदद से गलत इरादे वाले लोग बड़ी आसानी से ये काम कर रहे हैं, जो लोगों के भरोसे और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को कमजोर करता है। साथ ही स्वतंत्र मीडिया को बढ़ती आर्थिक कमजोरी का भी सामना करना पड़ रहा है। बदले की कार्रवाई के डर, ऑनलाइन उत्पीड़न, कानूनी धमकियों और आर्थिक दबाव के चलते खुद पर सेंसरशिप लगाने की जो प्रवृत्ति है वो 60% से भी ज्यादा बढ़ गई है। और इस बीच रेशमा, आपने देखा होगा कि लगातार सरकार काम कर रही है जो फैक्ट चेक लेकर आती है, हमें बताती है कि ये जो जानकारी दी जा रही है वो एआई के माध्यम से है, गलत सूचना फैलाई जा रही है, गलत इरादों से फैलाई जा रही है। और ऐसे में श्रोताओं को ये बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन सी जानकारी एआई के माध्यम से किस गलत इरादे से फैलाई जा रही है। इसके लिए उन्हें बिल्कुल आधिकारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इधर उधर सोशल मीडिया के दौर में तो हमें इनसे बचने के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
1: एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ व्हाई वी से Press freedom is not just for journalists, it is for every citizen. Because when the press is free, society is informed. When society is informed, democracy lives. This May 3rd, let's defend those who speak truth to power. Because journalism is not a crime. And now, listeners, we have a special news for cine lovers. Yes, the Madame Tussauds has launched a new Icons of India exhibition at its London headquarters, uniting the wax models of celebrities from the world of cinema and cricket. The limited time experience includes 13 figures of leading Indian actors and cricketers. For the month of May and June, the area has been transformed into a vibrant space inspired by Indian culture for visitors to get up close with some of its most iconic wax figures, including Amitabh Bachchan and Sachin Tendulkar. Steve Blackburn, general manager at Madame Tussauds London, said, "Bollywood's global appeal is huge and London's love for Indian cinema and cricket grows stronger every year." He added, with Icons of India exhibition, they are bringing fans closer than ever to the stars they love. Some of the wax figures have made their journey to London on loan from other Madame Tussauds attractions, including Virat Kohli's wax figure from Bangkok and Aishwarya Rai's wax figure from New York. The High Commission of India in London described the exhibition as a celebration of cultural ties between India and the United Kingdom, highlighting the global appeal of Indian cinema and cricket.

0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
1: The National Institute of Ocean Technology, NIOT, is set to strengthen coastal monitoring along the Puducherry coastline with the installation of a high-frequency radar system. The advanced technology will enable real-time observation of ocean surface currents and wave patterns up to 200 kilometers offshore, enhancing preparedness for extreme weather events, including cyclones. More from our correspondent.
2: NIOT has identified Kilinjalmed and Akkampetta in Karaikal as the most suitable locations for installing the radar systems after evaluating nearly 10 potential sites. A team led by NIOT Director Balaji Ramakrishnan recently visited Puducherry and held discussions with officials from the Department of Science, Technology and Environment to finalize the locations. The initiative is part of a broader collaboration between the Puducherry administration and the Union Ministry of Earth Sciences. Under a memorandum of understanding, key focus areas include ocean observation, coastal climate advisory services, sustainable fisheries, marine spatial planning, and ecosystem management. As a major outcome, a coastal ocean observation facility is also proposed for Puducherry and Karaikal. According to NIOT, the Karaikal radar station will function in coordination with an existing station at Kadalur, improving the accuracy and resolution of coastal current data. The radar is capable of monitoring oceanic and atmospheric parameters such as current speed, wave dynamics, wind patterns, and temperature gradients within a radius of up to 100 kilometers. Officials noted that similar systems have proven effective during the recent cyclonic events by providing continuous and reliable data for early warning systems. The collected data will be shared with agencies such as the Indian National Center for Ocean Information Services and the Indian Meteorological Department to improve weather forecasting. With equipment already in place, installation is expected to begin shortly, marking a significant step in coastal resilience and scientific monitoring. For the Parikrama, Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
0: और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर प्रकृति संरक्षण की मिसाल बन रही है। बलौदा बाजार भाटपाड़ा जिले के बारनवापरा वन्य जीव अभ्यारण्य के में काले हिरणों की जो सफल वापसी है वो पारिस्थिति की बहाली का एक प्रेरक उदाहरण है। तो अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ में करीब 245 वर्ग किलोमीटर में फैले बार नवापारा अभ्यारण्य में 1970 के दशक में विलुप्त हो चुके काले हिरण अब फिर से नजर आने लगे हैं। वर्ष 2018 में शुरू हुई पुनरुद्धार योजना के तहत लगातार वैज्ञानिक प्रयास किए गए। इसी कड़ी में फरवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण पहल हुई, जब विशेषज्ञों की निगरानी में 30 काले हिरणों को सॉफ्ट रिलीज पद्धति से उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इस पहल से सुनिश्चित किया गया कि ये हिरण नए वातावरण में बिना किसी तनाव के रच बस सकें। ब्लैक बक कंजर्वेशन सेंटर में बेहतर पोषण और वैज्ञानिक देखभाल से इन हिरणों की संख्या बढ़कर अब लगभग 200 तक पहुंच गई है। इन हिरणों की सुरक्षा के लिए हाई टेक निगरानी प्रणाली और GPS ट्रैकिंग के साथ ही नियमित पेट्रोलिंग भी की जा रही है। काला हिरण भारतीय उपमहाद्वीप का एक सुंदर और तेज दौड़ने वाला मृग है। ये हिरण खुले घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं और घास तथा छोटे पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात में इस सफलता का उल्लेख कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आज बारनवापारा के रामपुर ग्रासलैंड में दौड़ते काले हिरण यह संदेश देते हैं कि यदि प्रयास ईमानदार हो तो प्रकृति अपनी खोई हुई धरोहर को फिर से लौटा देती है। बारनवापारा अभ्यारण्य का काले हिरणों को संरक्षित करने का यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक केस स्टडी बन सकता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
1: Now let us take you to Sambalpur. Nestled in the serene embrace of the Gandhamardhan Hills lies the sacred Nrisinghnath Temple of Bargarh district of Odisha. Every year during the holy month of Baisakh, this peaceful destination comes alive with devotion and celebration as thousands gather for the famous Baisakh Mela.
4: As the dawn breaks, streams of devotees arrive from different parts of Odisha and neighboring states with prayers on their lips and faith in their hearts. They queue up for darshan of Lord Nrisinghnath. The sound of bells, Vedic chants and bhajans fills the air, creating a deeply spiritual atmosphere. A key highlight of the Mela is the holy path in the natural streams flowing from the hills. Devotees believe this sacred deep washes away sins and brings blessings. Surrounded by the forest and cascading water, the experience is both calming.

0: हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। और आज ही पुण्यतिथि है काशी के प्रसिद्ध योग गुरु और पद्मश्री से अलंकृत स्वामी शिवानंद बाबा की। आज ही के दिन वर्ष 2025 में 128 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। वे भारत के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन योग, मानवता सेवा और विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों की देखभाल में समर्पित किया। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में उन्हें मान्यता मिली थी।
1: And 3rd May is also the death anniversary of Howard Taylor Ricketts, an American pathologist after whom the bacteria family Rickettsiaceae and the order Rickettsiales are named. Ricketts was devoted to his research and on several occasions injected himself with pathogens to study their effects. The pathogen causing Rocky Mountain spotted fever, Rickettsia ricketsii, was named after him.
0: हम याद कर रहे हैं भारतीय लेखिका, अभिनेत्री और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला परांजपेई को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें भारत में परिवार नियोजन और यौन शिक्षा के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए जाना जाता है। वह भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और शिक्षाविद सर आरपी परांजपेई की पुत्री थी। 1930 के दशक में जब परिवार नियोजन जैसे विषयों पर बात करना भी वर्जित होता था, उन्होंने पुणे में क्लिनिक खोलकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी और चूंकि वो सिनेमा और कला से भी जुड़ी थी, तो ऐसे में उनके अभिनय की भी बात करते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वी शांताराम की फिल्म दुनिया ना माने में अभिनय किया था, जो सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती थी।
2: मुझे परेशान न करो, मैं नहीं आऊंगी।
3: कहा
2: मेरे सामने से अपना मुख काला करो।
3: हाँ दुष्ट ही के, कब से देख रहे हैं हम तोर स्वरूप पर कौन पाथर धर दिन है। बाजी इन कहूँ की जितना हम चुप पे रही थे उतो बढ़ जात है। अब तनिक हूँ तो बोल, मारे लपड़ों के मुँह लाल के दे हो।
2: आओ दिखाओ बहादुरी।
3: तो ले
2: निर्दयी कसाई, मार मार, बूढ़े के गले बांध कर मुझे कुएं में झोंका। ले अब गला दबा के जान ले, अच्छा होगा मुसीबत से छूट जाऊंगी।
3: उचार सूरत होश में है क्या।
0: आज ही पुण्यतिथि है प्रेमेंद्र मित्र की। वे बांग्ला साहित्य के एक दिग्गज कवि, उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। उन्होंने बंगाली साहित्य को बहुत सी प्रसिद्ध कृतियां दी और उन्हें मुख्य रूप से उनके कालजयी पात्र घनादा और बांग्ला साहित्य में विज्ञान कथाओं यानी कि साइंस फिक्शन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। वे कल्लोल युग के एक प्रमुख कवि थे और उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना और आम आदमी के संघर्षों का चित्रण मिलता था। बच्चों के लिए भी उन्होंने विज्ञान और रोमांच से भरपूर ढेरों कहानियां लिखी। उन्होंने विद्यासागर और सागरिका जैसी उल्लेखनीय फिल्मों का निर्देशन भी किया। सुनते हैं सागरिका फिल्म का ये गीत।

0: भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1976 में, जबकि उनकी काव्य कृति सागर थेके फेरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान रविंद्र पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं।
1: We are also remembering Niccolo Di Bernardo de Machiavelli because it's his birth anniversary on 3rd May. He was an Italian diplomat, politician, historian, philosopher, writer, playwright and poet of the Renaissance period. He has often been called the father of modern political philosophy and political science. For many years, he served as a senior official in the Florentine Republic with responsibilities in diplomatic and military affairs. He wrote comedies, carnival songs and poetry.
0: हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस दत्त को, आज उनकी पुण्यतिथि है। नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक और पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी। उन्हें मुख्य रूप से फिल्म मदर इंडिया में उनके प्रतिष्ठित अभिनय के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला और यह फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी।

0: one of the greatest actresses in the history of Indian cinema. She made her screen debut in a minor role at the age of 5 with Talaash-e-Haq in 1935, but her acting career actually began with the film Tamanna in 1942.
1: और रेशमा उनकी और राज कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती थी, तो उन्होंने आवारा, श्री 420 और चोरी चोरी जैसी कई हिट फिल्में दी. सुनते हैं उनके फिल्म की प्यारी सी मेडली.

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए मुझे यानी जया और रेशमा तिवारी को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने के, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल।
3: ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 5 மணி. சென்னை வானொலி 100.1 மெகாஹெட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு வழங்கும் அரங்கேசை நிகழ்ச்சியில் மகேஸ்வரி வெங்கட்ராமன் அவர்களின் வீண இசை கேட்கலாம். பல்லடம் ஆர் ரவி அவர்கள் மிருதங்கம். முதலில் ஏரா நாபை, பட்னம் சுப்பிரமணியம் ஐயர் இயற்றிய வர்ணம், தோடி ராகம், ஆதி தாளம்.

0: தொடர்வது இந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी

0: किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नेरम 6:05।
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.

जम्मूकश्मीरे लद्दाखे छत्तीसगढ़े तटीय आंध्रप्रदेशे च अद्य मेघवृष्टेः विद्युत्स्खलनस्य च संभावना विद्यते। अद्य हरियाणायां चंडीगढ़े दिल्ल्यां बिहारे ओडिशायां केरलं प्रदेशे पंजाबे मध्यप्रदेशे चापि तथैव स्थितेः संभावना वर्तते। विभागेन अद्य तटीय आंध्रप्रदेशस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अनुमानं प्रकटितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां आतिथेय गुजरात टाइटन्स दलम अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे पंजाब किंग्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

0: Following UAE's departure, OPEC Plus has 21 members, including Iran.
1: और सरबजीत, ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं हमारे पास, ज़्यादातर जो हम सबको और पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, हर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, तो आकार इसमें मैं जानना चाहता था और कई श्रोता भी शायद जानना चाहेंगे कि हम अभी तक जैसे हम म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्टली हम हमारा पैसा भारतीय बाज़ारों में, चाहे वो इक्विटी में हो या कहीं भी हो, दूसरी चीज़ों में जहाँ भी बॉन्ड्स में है वहाँ लगता है। कुछ फंड्स हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की सुविधा भी देते हैं आपको, जिनके पैसे बाहर भी लगते हैं। और अभी जब हम देखते हैं अभी का हाल कि कुछ क्षेत्रों के बाज़ार किसी दिन डाउन रहते हैं, कुछ के किसी दिन अप रहते हैं, उसी दिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उतार चढ़ाव नज़र आता है बाज़ार का। और जब ये सहूलियत है हमारे देश में कि हम इंटरनेशनल जो एक्सपोज़र है हासिल कर सकते हैं, तो एक आम निवेशक को, छोटे निवेशक को म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए अपने पोर्टफोलियो का लगभग कितना हिस्सा इंटरनेशनल फंड्स में डालना चाहिए मौका मिले तो?
2: जी देखिए, अंदाजन 20-25% या आप 30% तक भी रख सकते हैं। ये आपका जो एक इक्विटी पोर्टफोलियो है उसका लगभग 25-30% पोर्टफोलियो जो है, जो पोर्शन है, वो विदेशी फंड्स में लगा के हम लोग कहा जाता है कि बाहर के कंट्रीज़ की इक्विटीज़ में लगाना चाहिए। उससे हमारे को देखिए 3 बेनिफिट्स होते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। जो एक सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ऐसी कई विश्व में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिनका एक आम हिंदुस्तानी इंडियन निवेशक को उनका एक्सपोजर नहीं मिल पाता क्योंकि वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जो अल्फ़ाबेट है जिसका गूगल है, हम लोग गूगल से भी यूज़ करते हैं, या फिर जैसे एक अमेज़ॉन हो गया, तो ऐसी काफ़ी कंपनीज़ है जिनका अभी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। और अगर वो पोर्टफोलियो में हम लोग उसका बेनिफिट उठाना चाहे तो उसके लिए हम इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे कि आपने खुद कहा था, एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, हमारा सारा का सारा पोर्टफोलियो इंडियन इक्विटीज़ पर नहीं रहता। और तीसरा, वहीं पर एक डेप्रिसिएशन, जो हमारा जो रुपी डेप्रिसिएशन है वो हमारे लिए एकदम बेनिफिट कर जाता है क्योंकि हमारा पैसा आगे US डॉलर में लगा होता है।
0: वी विल कम बैक टू दैट आकार, इफ टाइम परमिट्स। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली। विनोद जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: मार्केट मंडल टीम को मित्र नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
3: अभी जैसे एक्सपर्ट साहब बता रहे हैं तो मैं ये जो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे एक या दो फंड सजेस्ट करेंगे प्लीज।
2: देखिए, अभी सबसे पहले तो जो आपके आमतौर पे अच्छा रहता है कि आप नैसडैक 100 में करें, जो US में डेवलप्ड मार्केट का फंड है। बट अभी काफ़ी टाइम से क्या चल रहा है कि जो इंटरनेशनल फंड्स है, एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर एक लिमिट होती है जो भारत सरकार ने लगाई हुई है $7 बिलियन की। वो अंदाजन 2022 के आसपास ब्रीच हो गई थी और उसके बाद पर फंड हाउस एक और लिमिट होती है $1 बिलियन की। तो जब पहले जो पूरी इंडस्ट्री वाइड लिमिट थी जब वो ब्रीच हुई, तो फिर भारत सरकार ने कहा कि अभी हम आगे और पैसे नहीं लगा सकते। लेकिन फिर जो फंड हाउस वाली लिमिट थी उस पर भारत सरकार ने कहा कि जिन जिन फंड्स के लिए वो लिमिट अभी बची है वो वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। एक यही कारण है, अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी पिछले काफ़ी समय से जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो अक्सर उनमें जो है सब्सक्रिप्शंस कभी खुलती है कभी बंद हो जाती है, और जब खुलती है तो रिस्ट्रिक्शंस भी होती है कि आप पर पैन पर इन्वेस्टर इससे ज़्यादा रुपया नहीं लगा सकते। तो जनरली जब भी आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को अपने पोर्टफोलियो में एंटर करना चाहे तो बेहतर रहता है कि आप US में जो कंपनीज डोमिसाइल्ड है जहाँ से आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि जो US का एक जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जो एक कंपनीज है जो नैसडैक 100 में ज़्यादातर आती है, उनको कहीं ना कहीं कस्टमर बेस के थ्रू पूरा एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला हुआ है, और आपका एक तरीके से डेवलप्ड मार्केट के थ्रू पूरा का पूरा एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है।
1: और शायद अभी कुछ फंड ऑफ फंड्स हैं जहां पर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं।
2: हाँ जी, और अगर नहीं भी है तो उसका एक जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप आजकल बहुत सारी फिनटेक ऐप्स आ गई है जिनके थ्रू आप ऑनलाइन जाकर के एक फॉरेन ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही

0: सिंपल क्लिक्स के थ्रू, और वहाँ से कोई एक नैसडैक 100 ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फॉरेन कंपनी में ही डोमिसाइल्ड है।
1: जी, जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हाँ सर, मैंने जैसे थोड़ा सा पढ़ के और थोड़ा सा रिसर्च करके आज 10 स्टॉक चूज किया, लेकिन उसका बहुत दाम ज्यादा है, 10,000 है, 8,000 है, 6,000 रुपया है, तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि, और म्यूचुअल फंड के थ्रू से जाने से कोई चिंता की बात नहीं है, और वो सब मल्टी कैप फंड में है, फ्लेक्सी कैप फंड में वो सब शेयर है, हमको क्या करना चाहिए मल्टी?
0: जी देखिए, अगर आप जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख करके उसमें से कुछ अपने स्टॉक्स का चुनाव किया और उनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक है आपने वहाँ से स्टॉक्स पिक तो कर लिए, बट जब आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा काम एक इन्वेस्टर का यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, उसको क्लोजली मॉनिटर करते रहना पड़ता है, हर क्वार्टर उनकी जो अर्निंग्स की रिपोर्ट्स आती है वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सा शेयर बेचना है या जो अभी उसका प्राइस चल रहा है कब उसको खरीद लेना चाहिए। मेरी सलाह रहेगी कि अगर जैसे कि आपने एकदम शुरुआत में कहा कि आपको उसमें थोड़ी सी घबराहट होती है और आप थोड़ा सा उसमें सोच में पड़ जाते हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का चुनाव ना करें, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही निवेश करिए। वहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसका काम यही होता है कि वो ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस सारे स्टॉक्स को मॉनिटर करेगा, क्योंकि अगर अभी आपने एक दफ़ा वो स्टॉक उठा भी लिया, आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आज से 3 महीने बाद भी वो कैसा चल रहा है, 4 महीने बाद कैसा चल रहा है, अभी आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखे ना रखे, अगर रखे तो जितना परसेंटेज का अभी उसका शेयर है उतना ही रखे या उसको बढ़ा दिया जाए। तो जो ये सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती है, इन सब से एक रिटेल इन्वेस्टर को जिनके पास थोड़ा सा टाइम की कमी हो और थोड़ा सा स्किल्स पूरे होना हो, उनसे राहत देने के लिए ही म्यूचुअल फंड्स हैं, और वहाँ पे वो फंड मैनेजर आपके पूरा काम करेंगे। प्लस उसमें एक एडेड बेनिफिट ये और हो जाता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादा मिलेगी। अभी जब आपने 6 से 8 स्टॉक्स में निवेश किया, आपने खुद कहा कि कोई कोई स्टॉक 8,000-7,000 रुपये का होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी आपको एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी कई सारे स्टॉक्स में निवेश करना पड़ा होगा, जिससे कि आपको लगा होगा कि जो आपके एक मिनिमम पूंजी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो कुछ ज़्यादा हो गई होगी। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो का बेनिफिट, जो कि अक्सर 40-50 स्टॉक्स का होता है, केवल 500 रुपये से उठा पाएंगे। बेहतर ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड का चुनाव करें उस केस में।
1: और सरबजीत, हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल था, मुझे लगता है शायद आप उस पर कुछ पूछना चाहती थी।
3: यस आकार, यू नो वी बीन रीडिंग अबाउट दिस न्यूज आइटम ऑफ लेट दैट यू नो सेवरल फंड हाउसेस हैव रैशनलाइज्ड द एग्जिट लोड ऑन रिडेम्पशन। Now, how does this signal a shift from the mutual fund's point of view to attract and then retain investors, A, and B, how important is this a criteria from the investor's point of view to make selection of a mutual fund?
0: I would like to answer the second question first. So, when it comes to the retail investor, and especially if they are investing in equities, I would say they should not look at exit load because it doesn't actually matter. So, whenever we are investing in equities, the ideal horizon should be at least 4 to 5 years long. And exit load is generally applicable to, to discourage short-term investments and to, you know, correct, withdraw over short-term periods, which is usually 2 months, 3 months, 15 days. So whenever you're investing in equities, you should have a frame, you should have a mindset of, you know, investing for at least 4 to 5 years. And hence, exit load should not matter to a retail investor at that point of time. But yes, if you're investing for very short periods and, you know, you are looking at the non-equity categories, the fixed income categories, the short duration ones, then probably exit load is something that you should be careful of. But I believe many, many, many short duration funds do not charge exit load. But still be aware of them.
1: जी, अगले कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग इंडिया में SIP कहते हैं इसको, जो हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, क्या बाहर देशों में भी SIP ही बोला जाता है, या उसको जो कॉस्ट एवरेजिंग के नाम से मशहूर है, क्या वो भी एक वहाँ पे पॉपुलर स्ट्रेटेजी है? और दूसरा, ये SIP टर्म ऑफिशियली एक्सेप्टेड है तो क्या किसी AMC से ये टर्म आई है, या फिर इसका टर्म का

0: भाव कैसे हुआ है?
1: देखिए, जो ये एक SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बेसिकली एक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि आपका रिस्क रिड्यूस कर देता है। सो मैं बहुत अच्छे से तो नहीं आपको ये कह पाऊंगा कि जो बाहर के देशों में भी इसका नाम SIP है या क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई दफ़ा इंडिया में काफ़ी सारे फंड हाउसेज कुछ ना कुछ इसमें इंजीनियरिंग करके कई दफ़ा थोड़ा बहुत अलग नाम कर देते हैं, वेरिएबल SIP कर देते हैं या फिर,
2: स्टेप अप SIP कर
1: हाँ
2: देते
1: जी
2: हैं
1: बिल्कुल।
2: जी।
1: तो देखिए, जो मेन चीज़ है वो ये है कि नाम से हमारे को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट जो उसका मेन पर्पस है, जो उसका मेन पीछे कारण है, वो जैसे कि आपने खुद अपने क्वेश्चन में एक दफ़ा बीच में कि कॉस्ट एवरेजिंग। सो कॉस्ट एवरेजिंग हमारे को SIP हेल्प करता है, क्योंकि आप यहाँ पे आपका जो रिस्क है एक मार्केट के गलत लेवल पे एंटर होने का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो मेरा मानना रहेगा कि नाम कुछ भी हो, इसके थ्रू जाना चाहिए, और ये एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड टर्म है इंडिया में। तो मतलब एक तरीके से आप इसको ऑफिशियल टर्म ही मान सकते हैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, जब आप हर महीने या हर एक पीरियोडिक इंटरवल्स पे एक ऑटोमेटेड तरीके से पैसे का निवेश करना चाहते हैं।
3: ऑल राइट आकार, लेट्स हियर व्हाट अमित हैज टू आस्क अस। अमित जी, अपना सवाल पूछें।
4: हेलो।
3: जी
4: हाँ मैडम, मैं अमित बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र वाराणसी से। मैडम,
3: जी
4: मेरा एक सवाल है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को डीमैट अकाउंट ओपन करते समय बहुत दिक्कत आती है, तो कोई मतलब ऐसा क्यों करते हैं? दृष्टिबाधित व्यक्ति क्या डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ये जरा बताइए। और दूसरी बात, कहीं म्यूचुअल फंड जरा बताइए ना, क्योंकि मैं पांच मतलब मेरी एज अभी 41 है, लेकिन कई 5-6 साल पहले मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे ऐसे ऐसे एक्सिस बैंक का भी म्यूचुअल फंड है, बड़ौदा डिविडेंड फंड है, दो दो फंड है, तो वो अच्छा है या नहीं ये भी जरा बताइए। और 2-3 फंड भी जरा अच्छे से बताइए, क्योंकि रिटायरमेंट तक मुझे फायदा होगा। थैंक यू।
1: अमित जी, आपने जो फंड्स के नाम बोले वो पूरे नहीं थे, AMCs के नाम थे, बट मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के करीब पहुँच रहे हैं कुछ समय में, तो देखिए आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपने पोर्टफोलियो में एक असेट एलोकेशन बना के रखना है। इनफैक्ट जो आप फंड्स के चुनाव के लिए भी कह रहे थे, फंड्स के नाम पूछ रहे थे, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि आप पहले समझिए कि जो फंड्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, और एक इक्विटी फंड में, एक हाइब्रिड फंड में और एक फिक्स्ड इनकम फंड में क्या डिफरेंस है। जो इक्विटी फंड होता है वो स्टॉक्स में निवेश करता है, शेयर मार्केट में लगाता है, और ये फंड आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ लेके आता है, रिटर्न्स लेके आता है, लेकिन साथ ही में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लेके आता है। इसमें छोटे समय में अगर आप रोज़ हर थोड़े हफ्ते में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके पैसे की जो वैल्यू है ऊपर नीचे होगी। तो जो ये वाले फंड्स हैं इनमें जो भी आप पैसा डालें वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, 4 से 5 साल के लिए। लेकिन ये जो फंड्स होते हैं, जो इक्विटी फंड्स होते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो का एक ग्रोथ इंजन भी बोल सकते हैं, जो कि आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न्स, एक महंगाई को मात देने वाले इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी दिलाता है। और जो दूसरे फंड्स होते हैं, डेट फंड्स, फिक्स्ड इनकम फंड्स, वो एक छोटे समय के लिए होते हैं, जब आपको पैसे छोटे समय के लिए लगाना हो या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लेके आनी हो। और जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। आमतौर पे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए 70% इक्विटी और बाकी का पैसा फिक्स्ड इनकम में सही रहता है, और जब इंसान रिटायरमेंट के पास पहुंचता है तो धीरे धीरे, क्योंकि उस पैसे की जो आवश्यकता है, जो आपको पड़ेगी, वो उसके लिए जो समय है वो कम होता जाता है, तो आपको इक्विटी से धीरे धीरे फिक्स्ड इनकम की तरफ मूव होना चाहिए ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आए। लेकिन वहीं पर आपको ये भी ध्यान देना है कि आप अपना सारा का सारा पैसा इक्विटी से उठा करके फिक्स्ड इनकम में ना डाल दें। इनफैक्ट इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको अपने पोर्टफोलियो का जो पैसा है कम से कम 30 से 40% इक्विटी में रखना है, उसको एक ग्रोथ इंजन में बना के रखें, क्योंकि अगर आप सारा पैसा फिक्स्ड इनकम में डाल देंगे तो आप एक लंबे समय के लिए एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स और जो इनकम है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे।
2: जी
3: सो आई बिलीव आर इन्वेस्टमेंट्स शुड इवॉल्व विद यू नो द एज क्राइटेरिया, आर रिक्वायरमेंट्स एंड आर फ्यूचर प्लान्स इन हैंड।
1: राइट राइट राइट। और साथ ही में आपका एक सवाल था कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, तो देखिए पहली बात मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए

0: डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में बिना एक डीमैट अकाउंट के निवेश कर सकते हैं, वो अपने आप ही डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। और इसके लिए बेहतर रहेगा कि जैसे आपको कुछ भी है तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की आप सहायता ले सकते हैं, या फिर जो भी आपका बैंक है आप उनको, आप उनके पास जा सकते हैं और उन वो भी आजकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स करते, तो वो जो भी सारा पेपर वर्क है वो आपके लिए एक आसान भरे तरीके में आपके लिए पूरा सहूलियत कराएंगे
1: जी। और चलिए सोने चांदी का हाल देखें, पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से सावधानी बरत रहे निवेशकों के कारण पिछले हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मई अनुबंध के लिए चांदी वायदा इस हफ्ते लगभग 0.7% बढ़कर 2,46,302 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई। जून अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 0.9% की गिरावट आई और यह 1,51,352 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसी हफ्ते में जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 2% लुढ़क कर $4,644.50 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 0.6% गिरकर $76.43 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर आ गई।
2: And so, both before we go any further in the program, maybe once again remind our listeners that you're connected with your very own program, Market Mantra. We are fortunate to have with us today Akar Rustogi, mutual fund expert. And Akar, there I see another caller from Mumbai. Sanjay ji, swagat hai aapka. Sawal poochhe.
3: Ji, namaskar. Mujhe death fund ke baare mein jana hai. Aur death fund mein kuch funds ke naam bataiye, please. Thank you.
0: देखिए, डेट फंड्स दो से मतलब कई प्रकार के होते हैं। कुछ अगर ऑफिशियल कैटेगरीज में जाएंगे तो 15 से 16 कैटेगरीज होती है, बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए केवल दो तरीके के फंड्स बहुत है। एक होता है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और दूसरा आप मान सकते हैं एक लिक्विड फंड। अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप पैसों का निवेश कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से कि आपको कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के अंदर, मे बी एक साल से पहले पहले चाहिए, 6 महीने 7 महीने में, तो बेहतर रहेगा कि आप एक लिक्विड फंड का चुनाव करें। लिक्विड फंड केवल उन टाइप के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनका मैच्योरिटी 3 महीने तक का होता है, 90 दिनों तक का होता है, तो ये बेहतर रहेगा। और वहीं पर अगर आप अपना पैसा कुछ सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं, 1-2 साल 1.5 साल 2.5-3 साल, तो फिर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड का चुनाव करिए। डेट फंड्स का जब भी हम चुनाव करते हैं तो उनमें जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ों का ध्यान देना है, वो एक तो देना है एक्सपेंस रेशियो कि उसका खर्च कितना है, क्योंकि देखिए जो डेट फंड्स है उनकी नॉर्मली कोशिश ये रहती है कि जो रिटर्न्स है वो थोड़ा सा एक फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंक होता है उससे ज़्यादा हो, और साथ ही में थोड़ा सा बस वो इन्फ्लेशन को बीट करते। तो यहाँ पर के क्योंकि इक्विटी जैसे हमारे को स्काई रॉकेटिंग रिटर्न्स नहीं मिलते तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा मैटर करता है। तो यहाँ पर जब डेट फंड्स का आप चुनाव करें तो थोड़ा सा देखिए कि जो एक्सपेंस रेशियो है उसके बाकी के जो फंड्स है कैटेगरी में उसके कंपेरिजन में कितना है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होना चाहिए। और साथ ही में एक मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एक डेट फंड को बैंक की फिक्स डिपॉजिट से आमतौर पे जो लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो एक डेट फंड है इनकी वैल्यू भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, वोलेटाइल होती है, बट हाँ इसमें आपको इक्विटी जितना वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी।
2: Listeners, if you have any queries on mutual funds and mutual fund related matters, feel free to connect with us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106.
1: जी, और अगली खबर FPI की। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, FPI ने पिछले महीने यानी अप्रैल में कुल मिलाकर 60,847 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से विदेशी निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। इस साल अब तक भारतीय शेयर बाज़ार से FPI की कुल बिकवाली 1,91,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है, जो पिछले साल की उनकी कुल बिकवाली से ज़्यादा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPI ने पिछले महीने भारतीय ऋण बाज़ारों से भी 7,000

0: 671 करोड़ रुपए निकाले हैं। अप्रैल में भारतीय पूंजी बाजार से एफपीआई की कुल निकासी 70,885 करोड़ रुपए रही। आकार, इससे पहले सोने और चांदी का हाल बता रहे थे, पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की चमक भी लोगों को आकर्षित कर रही है। अगर वक्त मिला तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी एक श्रोता इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
1: नमस्ते सर, मार्केट मंत्री टीम को नमस्ते। म्यूचुअल फंड में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अभी पिछले 2 साल से जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। मुख्य कारण ये बताया जाता है कि एफआईआई ने अपना पैसा करीब 1-2 लाख करोड़ों का निकाला है, हालांकि डीआईआई ने इन्वेस्ट किया है। तो ये लेकिन डीआईआई ने इन्वेस्ट तो किया, लेकिन रिटर्न तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये और रिटर्न उन्होंने इसलिए पैसा निकाला है कि वैल्यूएशन ज्यादा है। तो आपके हिसाब से कभी वैल्यूएशन बेटर होंगे, सो दैट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो हमारे जा रहे हैं हर महीने, वो दैट विल बी, बिकॉज टाइम करेक्शन होगा तब आएगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस करेक्शन विल हैव टू टेक प्लेस सो दैट वी स्टार्ट गेटिंग सम रिटर्न व्हिच इज बेटर देन एफडी रिटर्न और बेटर देन इन्फ्लेशन रिटर्न? थैंक यू सर।
2: शंकर जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स होते हैं, जब आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड होते हैं। अगर हम अभी पिछले 1-1.5 साल का रिटर्न देखेंगे, पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे, तो कोई मार्केट का अच्छा रिटर्न नहीं है, मुश्किल से कुछ 1-1.5% रिटर्न दिया है मार्केट ने। तो वो जो रिटर्न्स है, वो कहीं ना कहीं वहीं पर आकर के हो जाते हैं। और अभी काफ़ी सारी ग्लोबल अनसर्टिनिटीज चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ईरान US का जो वॉर चल रहा है, हमारे जो ऑयल को लेकर के इतने ज़्यादा टेंशन चल रही है, उस वजह से मार्केट अभी गिरी हुई है। तो मार्केट गिरी हुई है और उस वजह से रिटर्न्स कम है, मेरा ये मानना है। और वहीं पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी पीरियड बहुत आपने कम बताया, 1-2 साल, तो इक्विटीज़, यही कारण है कि जब भी हम लोग कहते हैं कि इक्विटीज़ में जब भी आप निवेश करें, कम से कम 4-5 साल के लिए करिए, क्योंकि हर थोड़े समय में अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हर थोड़े समय में ऐसा कोई ना कोई एक बेकर आता ही है, एक ऐसा पीरियड आता ही है जब मार्केट नीचे गिर जाता है। तो लेकिन इस वक्त आपको बने रहना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। और मैं ये आपको नहीं बता पाऊँगा, बल्कि मैं क्या, कोई भी एक्सपर्ट आपको गारंटी से नहीं बता पाएगा कि कब करेक्शन पूरी ठीक हो जाएगी और कब मार्केट उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी कह रहा है तो वो एक तरीके से अंतर्यामी हो जाएगा। और देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यू नो ब्रीफली कमेंट ऑन दिस विद गारंटी। सो एक लंबे समय के लिए बने रहिए इसमें, निवेश अपने, अगर आपने अच्छे फंड्स का चुनाव किया है तो उसमें निवेश अपना बनाए रखे।
3: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर। विजय जी, सवाल पूछें अपना।
4: जी जी मैम, नमस्कार सभी को।
3: नमस्कार,
4: मेरा ये सवाल है, मैंने एनपीएस में इन्वेस्ट किया था 40,000 मंथली
2: जी,
4: एनपीएस में, तो 1 साल हो गया उसको इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन उसका ना मुझे कहीं पर भी शो नहीं होता है, ना तो बैंक बैलेंस में वो पता चल रहा है चेकिंग में, ना स्लिप में आ रहा है लिख के कि कट हो रहा है, और ना ही वो एनपीएस के ऐप में जाते हैं तो वहां पता चल पा रहा है मुझे, और बैंक में जाती हो तो बैंक वाले भी कह रहे हैं कि इसका ऐप होता है, वो ऐप में आपको पता चलेगा, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि वो कट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है।
2: देखिए, जो पैसा अगर वो कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आप अपना सबसे पहले तो एक तो बैंक स्टेटमेंट चेक करिए कि वहाँ से अगर आपने ऐसे कोई सी एक उनका डी रेमिट का ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है, अगर आपने उसका चुनाव किया था तो वहाँ से पैसा कट रहा है कि नहीं, आपने जो भी तारीख दी थी, जो भी अमाउंट दिया था, तो ये तो आपको अपने उस बैंक स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि उस तारीख पे आपके बैंक खाते से वो पैसे निकले हैं कि नहीं निकले। और दूसरा, एनपीएस अकाउंट का जो बैलेंस है, वो जो एक सीआरए होता है, एनपीएस में सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है, उनकी वेबसाइट पे प्रोटीन, जो पहले एनएसडीएल था, वहां पर पे जाके आप चेक कर सकते हैं।
3: Alright, after staging a strong rebound in April, domestic markets are likely to remain focused on corporate earnings, geopolitical developments, currency movements and foreign investors' activity for cues in the week ahead. Market direction in the first week of May is expected to be driven largely by domestic cues, including the outcome of key state elections. Results for West Bengal, Tamil Nadu, Assam, Kerala and the Union Territory of Puducherry are scheduled to be announced tomorrow. Additionally, market participants are expected to monitor a busy earnings calendar with more than 250 companies set to announce their March quarter results.
0: आकार, मार्केट मंत्र बयाने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, धन्यवाद।
3: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. OPEC

0: Plus countries announce output increase next month amid ongoing West Asia conflict. In Indian bullion market, gold and silver prices display mixed trend last week, and domestic investors to focus on corporate earnings and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी।
3: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
2: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 62 और असम में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने

எங்க ஐயா.

0: தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் சர்மா. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी.
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी. मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है. मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं. ये पूरी प्रक्रिया रिटर्न

0: रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: वहीं केरल में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 62 और असम में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन दृष्टि के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया है कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक क्यूआर कोड वाला रह जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए हर रोज समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Abhineet Shukla. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry, to take place tomorrow. In Assam, 40 centres have been set up across all 35 districts for the upcoming counting process amid tight security. In West Bengal, counting of votes will be taken up at 77 counting centres across the state with multi-layered security in place to ensure transparency. Total 200 companies of central forces have been deployed for the counting venues. Meanwhile, the Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।

0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया

0: प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में दो दो केंद्र तथा नौगांव में तीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6000 काउंटिंग कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
3: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 24 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है।

0: ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
1: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।

0: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है। जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थी, तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौके और बैठक तक पहुंचाया।
1: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
2: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अक्षय रखना होगा।
0: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे, तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार और लेखक विजय दत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
2: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियाँ ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुँचाता रहा है।
0: कई साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका ममता कालिया अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं,
3: मुझे सन 50 का जमाना याद आ रहा है जब मैं 9 साल की थी। मेरे पिता ने तब आकाशवाणी ज्वाइन किया। मेरे पिता का नाम था श्री विद्या भूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भी रेडियो में थे, उनका नाम था श्री भारत भूषण अग्रवाल और विख्यात कवि थे वो। और मेरी साहित्य की यात्रा में रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और देखो, रेडियो कहता था इस बार कविताएं ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप कविताएं लिख के लाइए, तो रेडियो की वजह से मैंने 10-10 कविताएं लिख दी। मेरी भाषा में जो आज सरलता है जिसके कारण शायद लोग पढ़ लेते हैं मुझे, मुझे याद है कि बचपन में जैनेन्द्र कुमार तक ऐसे थे कि वो अपनी कहानी लिख के पापा को दिखाते थे कि देख लो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई तो मैंने डॉक्टर फॉस्टस मार्लो का जो प्ले है दिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ था कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दे।
1: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
4: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने

0: कहने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गाने गानों पर, लोकगीतों के बड़ी बहार थी सर, इसमें साहित्य भी कहीं होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो सब पता चला जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा कि जब कि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा, रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया। इसमें फिर ऑडिशन होता है, कहानी हमारी उनके पास थी ही, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है अब और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने में बुलाया जाने लगा वहाँ। हाँ, तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
1: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा, आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
2: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्वभाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्वभाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्लाह अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
0: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यह आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी नहीं। तो जो कविता हमारी चुनी गई थी वो कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
2: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
3: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहती है। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
2: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था।
1: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
2: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
4: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है उसमें सबसे

0: दादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूँ। आकाशवाणी ने मेरी आवाज को, मेरे तलफ्फुज को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला है उसको जो परिमार्जन किया है, आकाशवाणी ने ही किया है। आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ फिर युवावाणी में भी मैं काफी काम किया हूँ एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बंबई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहां जाता रहा। तो ये नशा जो है ये खत्म नहीं हो सकता, श्रोताओं के दिमाग से भी ये सबसे बड़ी बात है।
1: एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक पहुंची।

0: प्रख्यात ध्रुपद कलाकार पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा बताते हैं,
1: मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों भाई जो हैं वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती, ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए नहीं, यानी यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देकर के जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
0: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं, चाहे ध्रुपद हो, खयाल हो या ठुमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
2: ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना संबंध है मेरा। मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ ग्वालियर से आता था यहाँ। उस वक़्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो, ऑल इंडिया रेडियो के 150 रुपया मिलता था। अर्ली 60s की बात है, दैट वॉज द हाइएस्ट फी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, टॉप ग्रेड म्यूजिशंस।

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने यह साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के

0: श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
1: 2:30 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था। अब वक्त बदल गया होगा शायद, वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारी लाल जी को भी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में के स्वर आरोह अवरोह पकड़ो फिर एक वो। बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
2: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हूँ, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई है। भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
3: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला, रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हाफिज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बाल सुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्या वंदनम श्रीनिवास राव, टी के गोविंद राव, येमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। ये तरह वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में और चेन्नई में एक कर्नाटिक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, येमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया, और बहुत सारे गेस्ट कंडक्टर्स जैसे पंडित रविशंकर जी, वायलिन विद्वान लालगुड़ी जयरामन, टीवी गोपाल कृष्ण जी, बहुत सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है।

0: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
1: Those were such happy times and not so long ago.
0: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
1: But they're back again, just like a long lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइनकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा

से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट, या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट, और प्रस्तुतिकरण का अंदाज, एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है, वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्यप्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: इंडी पॉप जैसी विधा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आवाज उषा उथुप के लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। द रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
4: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
2: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हों या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
0: आकाशवाणी के आर्काइव्स आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक हैं। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
2: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान

0: शैली। आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया।
1: लेखक, कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
2: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी संस्कृति को पहुँचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुँचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुँच है। भारत की पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का, नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए ही हैं। तो ये इतना बड़ा काम सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
3: जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
4: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं। शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत, वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था। नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाहगाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी। अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबक है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरीके से।
0: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
5: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति। आकाशवाणी, आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतदान केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि

0: गणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह फैसला लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में भी मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल ना हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध सहित आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव कम करने को तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 6वें ओवर में 1 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्से में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित सबसे बड़ी निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्सी आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम एशिया स्थिति पर सरकार ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। वहीं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद आज हुई वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि वे बाजार की स्थितियों पर नजर रखकर उसका आकलन करेंगे। भू राजनीतिक संकट के बीच लगातार तीसरी बार मासिक तेल उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है।
2: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल ना हो। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि ईरान के नवीनतम प्रस्ताव में तनाव कम करने की एक चरणबद्ध योजना की रूपरेखा दी गई है जिसमें तात्कालिक संघर्ष प्रबंधन को दीर्घकालिक परमाणु विवाद से अलग किया गया है। इस योजना के तहत ईरान ने संकेत दिया कि यदि अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध सहित आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह हॉर्मुज़ मध्य के आसपास तनाव कम करने को तैयार है। ईरान ने परमाणु वार्ता से अलग समुद्री व्यापार और तेल प्रवाह को बहाल करने का भी प्रस्ताव दिया है। परमाणु मुद्दे पर ईरान ने संकेत दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन पर नियंत्रण और कड़ी निगरानी पर विचार कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये केवल एक व्यापक समझौते के हिस्से के रूप में ही हो सकता है जिसमें प्रतिबंधों में राहत शामिल हो। ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत नागरिक उपयोग के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने के अपने अधिकार की औपचारिक मान्यता चाहता है। ईरान ये आश्वासन भी चाहता है कि इस संबंध में कोई भी समझौता टिकाऊ हो जिसे एक तरफा समाप्त न किया जा सके। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल श्री स्टीवर्ट एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। ईरानी जहाजों की जब्ती पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी की ईरान ने आलोचना की है। श्री ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसा कहकर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आवाजाही के खिलाफ अपने आपराधिक कृत्य को सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में पिछले

एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई और 76 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार खेरसोन क्षेत्र में 3 जबकि ओडेसा, डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़्या में क्षेत्रों में 2-2 मौतें हुई और सुमी क्षेत्र में 1 मौत हुई। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने लगभग 334 ड्रोन दागे, जिनमें उत्तर पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र सबसे अधिक लक्षित क्षेत्रों में से एक था। आयातित ऊर्जा पर देश की अत्यधिक निर्भरता के कारण पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन वाले स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल हो गया है। बढ़ती लागत और आयात में बाधा के कारण देश की पहले से ही नाजुक स्थिति पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि जारी रहने पर पाकिस्तान में महंगाई दोहरे अंकों में बनी रहने की आशंका है। फिलीपींस तटरक्षक बल ने घोषणा की है कि वे स्प्रैटली द्वीप समूह के पास सक्रिय चीन के 4 अनुसंधान पोतों को हटाने के लिए विमान और पोत तैनात करेगा। तटरक्षक बल के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ये पोत फिलीपींस सरकार की अनुमति

0: था। आयातित ऊर्जा पर देश की अत्यधिक निर्भरता के कारण पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन वाले स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल हो गया है। बढ़ती लागत और आयात में बाधा के कारण देश की पहले से ही नाजुक स्थिति पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि जारी रहने पर पाकिस्तान में महंगाई दोहरे अंकों में बनी रहने की आशंका है। फिलीपींस तटरक्षक बल ने घोषणा की है कि वे स्प्रैटली द्वीप समूह के पास सक्रिय चीन के 4 अनुसंधान पोतों को हटाने के लिए विमान और पोत तैनात करेगा। तटरक्षक बल के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ये पोत फिलीपींस सरकार की अनुमति के बिना समुद्री अनुसंधान कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का उल्लंघन है। फ्रांस में इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में एक नाव के उत्तरी तट से टकरा जाने के बाद 2 महिलाओं की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। 82 लोगों को ले जा रही ये नाव बोलोग्ने-सुर-मेर के पास हार्डलॉट समुद्र तट से रवाना हुई थी। फिलीपींस में मायोन ज्वालामुखी के फटने के बाद राजधानी मनीला के दक्षिणी क्षेत्र से हजारों लोगों को निकाला गया। प्रशासन ने जनता को ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर तक के दायरे से दूर रहने की सलाह दी है। ज्वालामुखी विज्ञान संस्था ने अलर्ट स्तर 3 जारी किया और भूस्खलन तथा लावा बहने की भी चेतावनी दी है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता और विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की सरकार ने दुनिया भर में पत्रकारिता और सूचना के अधिकार के खिलाफ दमनकारी अभियान चला रखा है। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने अपने नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में ये बात कही है। चीन ने 110 पत्रकारों और 3 मीडिया कर्मियों को हिरासत में रखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया है। ओपेक से जुड़े देशों ने अगले महीने के लिए तेल उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के ईरान के नए बहुस्तरीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Please stay tuned for the news in Hindi at 11 PM.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 200

0: 85 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और

0: लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सीएपीएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया के लिए मतगणना केंद्र के अंदर ड्रोन, मोबाइल फोन और ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसकी संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गुजरात टाइटंस की ओर से जैसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை பாட்டு பாடவா, கங்கைக்கரை பாட்டு ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी

0: 26 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

அருளைச்சு போரடிக்கும் தோமானே. ஹலோ ஹலோ அம்மா.

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை. கர்ணன், 1000 ரூபாய், காதலிக்க நேரமில்லை ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की

0: पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
2: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry, to be held today. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting at 4 states and 1 union territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies.
1: Janadesh 2026.
4: Special program on results of assembly elections in Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
1: Today, the 4th of May 2026.
4: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
1: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
4: Tune into Akashvani Gold.

0: கருந்தேள் கண்ணாயிரம் படத்திற்காக ஒலித்த பாடல்களை பாடியவர்கள் பி. சுசீலா, சதன், மனோரமா, எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் ஆகியோர். கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கி சாத் மே வைஷ்ணவி. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित हैं और भविष्य में अपार संभावना

से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उसे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

கட்ட கட்ட கிட்ட கிண்ணா கட்ட கட்ட கிண்ணா கட்ட கட்ட.

0: வசனம் சமோசோஜபேதம்.
1: நேயர்களே, இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை கிஷன் மகாராஜ் அவர்களின் தபலா, குலாம் அலி அவர்களின் பாட்டு ஆகியவை இடம்பெற்றன. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा. मतगणना 24 मई को की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है. तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है. केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी. पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का
3: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए.
4: जनादेश 2026.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे. 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है. जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य

0: बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं लिया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और आंधी तथा तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry, to be held today. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting at 4 states and 1 union territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies.
2: Janadesh 2026.
3: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
2: Today, the 4th of May 2026.
3: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
2: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
3: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies.
2: From 8:30 a.m. onwards today.
3: Janadesh 2026.
1: Indian space startup Galaxy has launched Mission Drishti, world's first Optosat satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. Weighing 190 kilograms, Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded the successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey. The Ministry of External Affairs, MEA, stated that Lipulekh Pass has long been a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954 and said this is not a new development. Official spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, answered the media questions regarding comments made by the Foreign Ministry of Nepal on the border issue in the context of the Kailash Mansarovar Yatra.